तक जिला जिला में सुकन्या से जिला प्रधानमंत्री आयोग थे हाई में दही प्रतिनिधि रहने गई अपने निकट भोट लिने मैं जगह उपलब्ध कराने गुनासो आने गये तर इस पटक भी सरकार ने सुकन्या से जगह दिलाने जिम्मा सरकारी कर्मचारी और पूर्व प्रशासक तस्ते चिकित्सक लाइसेंस परीक्षा विदेश पढ़े आया कमजोर नेपाल को अध्ययन कर नतीजा संतोषजनक शीर्षक में कांग्रेस को क्रियाशील सदस्य बंद तीन प्रतिबद्धता अनिवार्य शीर्षक में खबर तीन महीना पच्चीस सार्वजनिक कार्यक्रम में

0: है विद्यालय प्रतिभा आकर्षण विद्यार्थी ने पूछा की जानता है विद्यालय में पढ़ाई प्राथमिक पढ़ाई बंद होने अवस्था में प्रत्येक वर्ष हिरासत में चार जेल में पचपन बंदी को संकास्पद
1: इसलिए द्वारा कश्मीर में काम तथा सुरक्षा कर्मचारी अफगानिस्तान में 35,000 भाग।

0: तिनलाई त त्यहाँ रेगुलरली तिनलाई त ट्याक्सी ट्याक्सी सेट लगाएपछि
1: गतिविधि कानुनी वित्तीय अनुशासन विरुद्ध निन्दनीय कार्य हो।
2: वित्तीय संस्था लिमिटेड हो।
3: समस्या
4: कार्यक्रम

0: राष्ट्रपति हमारी के बदलता घटी मेमिल स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप में दिखे यहां कल स्वास्थ्य सेवा में आर्थिक बदलता करे से कौशल्य अस्पताल भास्करी पर संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा थी
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के पद से निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेष फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा बुटू चेक जांच था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट सर्जरी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक का घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटुक एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा संपन्न लैब सेवा उपलब्ध भा पैरालिसिसों को मुकाम बिना नशा डाक हाथ द्वारा निचलना ग्रामीण का नकला फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी विधि से उपचार कई था
0: नशा डाक ग्रामीण के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी से सफल उपचार कर दी
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कही था असहाय नागरिक एक पर महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक पुनः सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कही था कौशल्य अस्पताल प्रणाली भास्करी शाखा 5 भास्करी बर्दिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण ताजर
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 भास्करी बर्दिया संसदीय

0: राजगिरी भतिया नमस्ते स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का टीम मेरुदिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व प्रति टीमले यहाँ का स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ा का कारण कौशल्य अस्पताल भास्करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कमजोर नशा चेक जांच करी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा पेरामा शिशुको मुबाल होइन नसा दाब बैलक हात द्वारा निचल्ना पेरामी कनकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे उपचार कै देखा
0: नसा दबिए बिरामी हुन्छन् बिना प्रेसर फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार गर्छे
1: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएका असहाय नागरिक एकर महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवामा 10% छुटकीय व्यवस्था गरिएका कुशीले अस्पताल प्रणाली बाँसकरी शाखा 5 बाँसकरी बर्दिया प्रणाली पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-4-00-192 हो 084-4-00-210 बाँसकरी बर्दिया सँगसँगै फोन 11-74-94

भेड़सात दाल मुरीगेड़ा आरा मच्छी शिकार फल फूल आयुर्वेद खाना नियमित रूप में खाई जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो।

0: ಮಾಡಿ ಸತ್ರಿ ಕಣಕಾಯಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಬ್ದ ಕಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಜಿದಾಮ ಸೇತು ರಹಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಲಿ ಆಜ ನಿರ್ಣಯ ಕಾಕಿ ಜೀವನ ನಿಶಾಕಾರ ರೋಗ ಸೇವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ ಪಾಯಿ ರೇಡಿಯೋ ಗುರುಬಾಬಾ ಎಫ್ಎಂ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ್ಯಾಸಿರಿ ಜನವಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವಿಸ್
1: स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता का मेलमिलिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि यहां को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल का कार्य से कौशल्य अस्पताल बांसकड़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
0: अस्पताल से दे देना सेवा
1: 24 घंटा डॉक्टर के पतन से निगरानी में उपचार करा जाए
0: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करी था
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पॉजिटिव सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटुक एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा केरला शिशु को मुंह बांध बिना नशा दाग हाथ द्वारा निचलना विरमी मुखन फिजियोथेरापी तथा एक्सपेशल थेरापी विधि में

आगे असला है नागरिक एकर महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करने बात खुशी ले अस्पताल प्रारी बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय फोन 11 चौदह।

0: पेशेंट कैसे सुझाए स्वस्थ पता की सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य कर्मी के जनहितकारी सर्विस
0: कार्यक्रम।

तो जहाँ पर हमारे से भाव से सुंदर ही तो रोक नहीं हो ठीक बात दीजिए और हमें यह बताएगा आप सोचे हमें 5 लाख कुछ दौलत से पागल के साथ

जीवन अपनाए। निशाना रोग झटकाधारण ध्यान ग्रामीण जीवन खत्म हुई। संतुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिरा में से दूर रही, अनाभना नियंत्रण करी, आज निर्णय कार्य जीवन अपना, निशाना रोग में से बाटी स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा।

0: करना, नाराबाजी करना और जनप्रिय राष्ट्रीय गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध को निंदनीय कार्य हो।
1: यूनिट नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। रेडियो प्रभाव एफएम को सहकारी में जनहित में जारी संदेश।
2: नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन चौधरी, बस्ती नगरपालिका वडा नंबर 12 उत्तराखंड नौ जिला। मैं परवर्ती जड़ी बूटी उद्योग बड़े लंबा सारा संदेश माता सब किसम का मौसम हम लोग प्रगति जड़ी बूटी उद्योग माता धन्यवाद।

सवा छ बजे हाम्रो सन्देशमा आफ्नोहरूलाई स्वागत बासिया बिन्दु संग्राम कुमार सन्देश पर्दियाजपुर पार्टी रेडियो प्रतिवर्धित एम खबरपुर रेडियो हाते मारो जानकी गाउँ पालिका बाँकी मसे प्रसारण प्रसारण विकिवार हाम्रा सन्देशको खोलिदारी मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षक मसे बाँसुरी तिरुत्तर बखारीमा सामूहिक क्रिय पूजा हुए सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सहायक विद्यार्थी कम शैक्षिक सामग्री वितरण बाँसुरी मुखी क्याम्पस लगभग बातचित अध्यक्ष गर्न 5 लाख कोष घोषणा वर्कर उपहरणश प्रथा संरक्षण विधेयक उत्तर प्रदेश सभामा छलफल राष्ट्रपति कार्यालयमा

0: सर कर दिया तो सामाजिक विकास मंत्री मेघराज खड़का विधेयक का सैद्धांतिक पक्ष पर छह तलाक प्रस्ताव पेश कर रहा सरकार सहभागी प्रदेश सभा सदस्य विक्रम सिंह थामी प्रखंड उपमंडल प्रथमा व्यवस्थापिका न्यायपालिका व कार्यपालिका कमिश्नर का रूप में व्याख्या करते रहना कानूनी मान्यता देना आवश्यक प्रतिरोधा सामाजिक तथा धार्मिक कार्य व्यवस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका खेलते उसे प्रदेश सभा सदस्य खुशी राम दहेला थानी प्रमोशा पर्ता मानव सभ्यता समग्र विकास उल्लेख करते सामूहिक काम सामूहिक क्षमता संपादना सहकर्म काम में यात्रा विशेष भूमिका वहां का अनुसार पर्ता और प्रमोशा पर्ता ने
1: राष्ट्रपति कार्यालय सीता विकास में से चोरी हुई प्रकरण में संक्रमण कारक में पड़े पांच जन सार्वजनिकरण का पकड़ पढ़ाने काठमांडू तारकेश्वर नगर पालिका गांव मनमेजुक 25 वर्षीय राजीव महाजन गोरखा धारकी गांव पालिका चार लापड़ा का घर दखल तारकेश्वर दास मनमेजु वैष्णव 26 वर्षीय टेक प्रसाद गुरु काठमांडू महानगर पालिका 17 और 27 वर्षीय आयुष महाजन बैतरी जिला सैन्य गांव पालिका 3 घर दखल

0: ప్రభువారి
1: ఏ కృపా రేడియో ప్రభావ సందేశ
0: आमारो दूत बच्चा को पहिलो औषधि हो जन्मेको एक हप्ता भित्र अधिकारिक मतदान शुरू गरौं छ महिनासम्म आमाको दूधमा देख्छ स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य स्तन पान गरौं स्वास्थ्य एकै छ
1: सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले

0: सवारी धर्मियों को सीमित की खुले मिलाना सेवा करो कब्जा थी उपभोक्ता तथा यात्रियों के द्वारा थी जबकि भाई बहन समिति के नाम को सिंधी के कार्य होता है नए सवारी साधन संबंधी के रूप थी और अपनी नई दफ्तर करने वाले पच्चीस सालों के प्लान में दूसरा कार्य कोई त्रुटि नहीं होगी उन्हें इसमें सरकार सूचित होना शिक्षा और कला स्वयं सेवा हुआ था।
1: राष्ट्रीय सभा का सांसद अभिनय प्रधानमंत्री वरेंद्र शाह ने संसद में डी को अभिव्यक्ति तंत्र में लिए तत्काल राजीनामा मार तरीका सर राष्ट्रीय सभा को आज बसे को बैठक में विभिन्न दल का सदस्यों ने प्रधानमंत्री ने भारत को जन्म नेता में नीचे को अपनी अभिव्यक्ति तत्काल फिरताने में समय प्रदान कही गई थी। नेपाली कांग्रेस का सांसद श्री बहादुर थापा ने प्रधानमंत्री बहुमत स्थानीय प्रतिनिधि शर्मा ने दिए को नेपाल भारत सीमा संबंध अभिव्यक्त अत्यंत गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण तथा दल जिम्मेवार भाई को बताने भाई
2: प्रधानमंत्री के आगे संसद प्रतिनिधि सभा में नेपाल को भारतीय भूमि अतिक्रमण भएको भन्ने आशा व्यक्त गर्नु अत्यन्त गंभीर दुर्भाग्य विषय हो। यदि प्रधानमंत्री शर्मा आफ्नो करेक्ट पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने ती प्रमाण संसद र नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ। यदि त्यस्ता प्रमाण छैन भने उहाँले राष्ट्रसँग स्पष्ट रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा भ्रम सृजना गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।

0: जिनके अंतर आदमी इसको कभी कभी कभी खराब कर से पाचा करना तीनों बारे में चार साल बदली से छह हुआ था
1: गाड़ियों का मतलब चालीस की नौकरियों का सहायता की

partita si dia, già sempre sarebbe già quella artista di un che continuava a esserci in teatro, il telegrafo, il telegrafo, ma attraverso la locomotazione, insomma, anche di stesso la città, il telegrafo, attraverso un aereo, non è vero, via, ma che ti chiede la costruzione, e non lo capisco, ma è così. समुदाय है ना कार्य प्रकृति पूजक था वो प्रकृति पूजक समुदाय प्रकृति समाचार पशिग करती हुआ कदा विषय अंदर पादर रखने का रिपोर्ट अंदर बाका ये का एलआईटी आदिवासी जनजाति थारु समुदाय प्रकृति से रमिति अवन जीवन शैली और जीविका चलाई था वन जंगल से घास काटने का जन्म मृत्यु स्वरूप संस्कार प्रकृति से जोड़ दिया था सुनी ये विषय में अनुसंधान करता शिखर देख से करल

स्त्री हिंदू बात नहीं गई ऐसी हम बिरादरी को समाचार सुने और एक और पुरुष हम पत्नी और सीमित धारणा पड़ा रहा है जो का पुरुष जो बने कहा स्त्री पत्नी और बिरादरी को संसार में

भावी उपाय उसके हर एक कर्म को सिद्धि नहीं जति इसको कोई कोई सफा सुगुण बना हर को गुजार अच्छा चार चंद्र फल तुलसी को मरना पति बाट लिया विवाह रोपू मुकम गाड़ी का काट हटाएर तैयार भाई नया काट हो जोड़ी दियो हमने इसे गरे को देखे पति गांव का बातचीत हमारे परिचय मांग आए हमने उन्होंने नया परिचय दे दिया हम तीर्थ यात्री हूँ इस ठाव में उठी दिल्ली को वास रहे उसे नहीं याद न करे तो जैसे इस ठाव को उद्धार करने लगे का स्वामी तब मेरे को इस तरह को एक कति राम रहूं थे हमको पूरा सुने रखती दे असम्मित करे वही कति कति की कहानी इस ठाव इसका बारे में इस गरे को सुनी प्रभावित करेगा

से यह यात्रा इसको गलती से भाई को महसूस कर रही थी। इसमें अंतिम समय सात दिन बड़ी शुरू देखने जाने के थे जिसका स्नान जब देखने थे उसका बार का